0: जी काफी अच्छा रहा है।
1: Ten four. And Rod, say, just take a parker.
2: Angel 11, 10-4.